0: रही मैदान की बात, जितना ज्यादा शिकार का मैदान वसी होगा, शिकार उतनी ही जल्दी जाल में फंसेगा। एक माहिर शिकारी कभी भी अपने आप को तंग हिसार में कैद नहीं करता है, वरना शिकार करने के बजाय शिकार हो जाता है, समझे?
1: जी सरकार, सरदाब और जेर जमीन भी कोई छुपने की जगह है? उम्र साल शिमर और खुली अगर चूहे के बिल में न छुपते तो आज वो अशाज बशाज होते, मेरी और आपकी तरह मुख्तार उसके सिपाहियों का मजाक उड़ा रहे होते।
0: बकवास मत करो, कम हंसने से शिकारी को ज्यादा जज्बा मिलता है। लो, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा ऐसा वार देखूं कि दिल खुश हो जाए।

0: आप निशाने के आगे खड़े हैं सरकार।
1: मारो, हदफ बेजा मजाक होता है, मश्क नहीं। मारो।
0: आप खड़े होते हैं तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं।
1: तीसरा सबक क्या था?
0: अगर शिकारी अपने शिकार डर जाए तो मغلوب हो जाता है।
1: शाबाश, शिकार का खौफ यानी नाबूदी। जो फौजी जंग से डर जाए वो जंग पहले ही हार चुका। मारो।

0: सही मारा मैंने।
1: मुझे मालूम था कि तुम ये कर लोगे। शाबाश। छुप जाओ फौरन।
2: मारना मत उर्मला, मैं हूं हरकोस।
1: हाँ बताओ क्या खबर लाए हो।
2: तुम्हारे दुश्मन को ताक के आया हूँ।
3: दरिया के उस तरफ खड़ा होकर तुम्हारी बू सूंघ रहा था, शायद हमारा ठिकाना ढूंढ निकाला है। उसके इरादे ठीक नहीं है उर्मला, लगता है जब तक तुम्हें शिकार न कर ले मुख्तार के पास नहीं जाएगा।
1: बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े नजर आ रहे हैं। इस मजूसी को शिकार करने में बहुत मजा आएगा मुझे।
3: शिमर को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया है, उसके जोश को ठंडा नहीं करना चाहोगे।
1: हौसला रखो, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उर्मिला का नाम सुनते ही कांप के रह जाएगा।

0: ये है वो जगह जहां हुरमला छुपा हुआ है। अगर तुम लोगों के पास सूंघने की अच्छी हिस हो तो बूए हुरमला को पहचान लो। उसके पास हमारे इस हिसार से निकलकर भाग जाने के लिए सिवाय इस रास्ते की कोई चारा नहीं। नजा, तुम एक दस्ते के साथ खजूर के पेड़ों के दरमियान छुप जाओ। कसीर, तुम इस तरफ से आगे बढ़ो। शुबेर, तुम इस तरफ आगे बढ़ो। यजदान, हम एक दस्ते के साथ उसके ठिकाने पर हमला करेंगे। सिर्फ पानी का रास्ता खुला रह जाए। हुरमला को हमारे हिसार से निकलने के लिए मजबूरन दरिया की राह लेनी पड़ी। दरिया में वो फंस जाएगा और उसे शिकार करना भी आसान।
1: नजाक, कसीर, शुबे, बहुत होशियार रहना।
0: अगर वो भाग गया तो तुम लोगों को नहीं बख्शूंगा।
2: आप बेफिक्र हो जाएं अमीर, अगर मेरे इलाके में आपको हुरमला नजर आ गया तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा।
3: आप फिक्रमंद ना हो अमीर, मैं कीड़ों और परिंदों को भी नजर में रखूंगा। हुरमला तो फिर बहुत बड़ा भालू है।
4: ये कौन सी जगह है?
5: कूफे के शेर हुरमला असदी की काछार, वो तीर अंदाज जो कान को नाक के साथ सी देता है। किसी माँ ने इसका सानी पैदा नहीं किया।
4: ज्यादा खुशामदी मत कर, मुख्तसर जवाब दो। तुम कितने आदमी हो?
5: दुश्मन की तादाद के मुताबिक मेरी तादाद भी कम ज्यादा होती रहती है। दुश्मन एक हो तो मैं भी एक होता हूँ, वो दस हो तो मैं भी दस, वो सौ हो तो मैं भी सौ।
4: अगर तुम्हें चारों तरफ से घेर लें तो तुम क्या करोगे?
5: हिसार के दरमियान छुप जाऊंगा, घूमता रहूंगा और तीर बरसाता रहूंगा। उन्हें इतना उलझा दूंगा कि ये ना समझ सके कि तीर कहां से आया है।
4: अगर दुश्मन तुमसे बात करे तो उसे कैसे जवाब दोगे?
5: अपनी आवाज बदल लूंगा।
6: इतनी देर ना करो कि दुश्मन हमारे सर पर आ खड़ा हो। जल्दी करो हुरमला, जल्दी करो।
4: हुरगोज, एक अच्छा शिकारी कभी भी जल्दी नहीं करता। पता, तुम्हें याद रहे कि तुम मेरे हाथ के पले हुए हो। कियान ईरानी अपनी भरपूर ताकत के साथ भी तुम्हारी छोटी उंगली के बराबर नहीं हो सकता, बशर्त ये कि तुम वादे के मुताबिक अमल करो। मैं जा रहा हूं ताकि उस ईरानी के कल्ब पर हमला कर सकूं।
5: आप बेफिक्र हैं मालिक, मुझे अपना सबक याद है।
4: फतह, जो सिपाही मैदान जंग में गलती करे उसके पास तलाफी की मोहलत नहीं होती। क्यों?
5: क्योंकि वह सर गुमा चुका होता है।
4: शाबाश, अब तुम समझदार हो।

0: Jetzt dann. Ist der AG auf die Art und Maske, ich habe vor mir zu fallen. Ist dann das Ticket-Coupé wieder hier und mein Fuß.
1: क्या बेहतर ना होगा कि हम दरिये से चल पड़े हैं उर्मिला?
2: पानी का रास्ता बंद है हरकूज। ये ईरानी पहलवान इस खाम ख्याली में है कि अरब के पानी में बड़ी मछली को शिकार कर सकेगा। कादिसिया को भूल गया है शायद।
1: अगर दिल की बात पूरी होने वाली होती तो आज हम दोनों अपने ख्वाबों के महल में होते और अय्याशी कर रहे होते।
2: क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारे पास सुलेमान का कालीन होता, उस पर बैठ के उड़ते और जिस घर की छत पर जी चाहता वहाँ उतर जाते?
1: क्या सुलेमान का कालीन सच्ची चीज थी उर्मिला?
2: उड़ने वाले कालीन के सच्चे या झूठे होने का मुझे इल्म नहीं। हाँ, मगर ये जानता हूँ कि लोगों की जहालत सच है।

0: बहुत खूब हौसला, समझ गया कि तुम्हें खबर मिल गई।
1: शोर मत मचाओ कि मेरी बात तुम तक पहुंच सके। मैं हूँ खेयाने ईरानी, या तुम लोगों के मुताबिक खेसाने अबू उमरा। तुम्हारी समझदारी और होशियारी हैरत अंगेज है। तुम्हें ये चूहे बिल्ली के खेल खेलने में बखूबी आती, मगर कब तक, कहां तक? कभी सुना है कि कोई मलकुल मौत के चुंगल से फरार हो पाया हो? मिला आखिर तुम्हें तस्लीम होना ही पड़ा। मैं तुमसे दस्तबरदार होने वाला नहीं हूं, मेरी सारी इज्जत तुम्हारे शिकार के दांव पर है। तो फिर मर्द बनो और मैदान में आओ, हम दोनों अकेले लड़े। तुम्हें ये ज़ोम है ना कि तुम तीरंदाजी में बेमिसाल हो, आ जाओ, आओ अपनी महारत मुझे दिखाओ। मैं भी आरश तीरंदाज के खानदान से हूं, दो तीर एक साथ चलाएंगे, या मैं तुम्हें शिकार कर लूंगा या तुम मुझे शिकार कर लोगे।
2: शिवर को मारने वाले का नाम कुछ बुजदिलों के लिए डराने वाला नाम हो सकता है, मगर मैं उर्मिला हूं। उर्मिला, कोई ऐसी हरकत ना करना कि मैं साबित कर दूंगा कि सानी अबू उमरा सिर्फ खाली ढोल है। अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें ऐसा सबक

0: सिखाऊंगा कि जब तक जिंदा रहोगे जलते रहोगे।
1: मैं जलने ही तो आया हूँ, आओ मुझे जलाओ हैवान। तुम्हारी लुगत में मर्दान की सिर्फ दावेबाजियों को कहते होंगे। अगर तुम मर्द होते तो एक शीरखार बच्चे के गले पर तीर न चलाते। सुन ले, जो भी गुलबला इब्ने कागिल असदी के साथ रहे और इस बच्चों के कातिल की मदद करे वो भी मार दिया जाएगा। मैंने इत्मामे हुज्जत कर दी ताकि मुख्तार की अदालत में तुम लोगों के पास कोई उज्र बाकी न रहे।
2: एहतियात के साथ हमला करते हैं इस्तान और मुला जिंदा काम आएगा बनस्पत मुर्दा की।

0: दुश्मन हमारे पीछे हैं।
1: पीछे हटो, पीछे हटो।
0: अमीर, दुश्मन हमारे आगे भी है और पीछे भी।
1: तुम लोग पीछे हटो, जख्मियों को भी ले चलो।

0: शेर की दुम से खेल रहे हो ये रानी।
1: यजदान, आगे और पीछे से खुद को छुपा, हम आधे अफराद को लेकर हमला करें।
2: हम अपनी भरपूर ताकत के साथ हमला क्यों ना करें अमीर?
1: वक्त कम है यजदान, मुझे डर है कि ये बुजदिल फिर ना निकल जाए हमारे चुंगल से। जल्दी करो।
2: माफी चाहता हूँ अमीर, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए। हमने अपने आप को इसलिए छुपाया था कि हुरमुला बाखबर ना हो और काफिर रहे। अब जबकि वो समझ चुका है, फिर छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इन शाखों को उठाकर चलना हमारी रुकावट बन रहा है। सब थक गए हैं, अगर आगे पीछे से खुद को छुपाएंगे तो मुश्किल मजीद बढ़ जाएगी। अगर अमीर इजाजत दे तो हम मजीद अच्छी आराइश के साथ मैदान में उतरेंगे।
1: तुम ये समझो यस्ता, जो भी करना है जल्दी करो, आज इस लियो की जड़ काटनी ही होगी।
2: जी अमीर।

0: नाहिम, नीचे आओ जल्दी।
1: लड़े?
0: तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हम इनकी मजामत करनी थी जो हम कर चुके। यकीन हुरमिला हिसार से गुजर चुका होगा। नीचे आ जाओ।
1: भाग जाए?
2: नीचे आ जाओ ताकि तुम्हें नई चाल बताऊं।
1: मुझे तो मजा आ रहा था यहाँ से तीर मार कर। वो लोग दोबारा आ जाएंगे।
0: तो हम उनका असली अदब है क्या है? वो हुरमिला को ढूंढने आ रहे हैं, हमसे कोई वास्ता नहीं उनका।

0: क्या खबर है?
1: अमन अमान है, मैंने रास्ता खोल दिया है, आप लोग पुरसुकून होकर जा सकते हैं।
2: तुम लोगों का अमीर अच्छा तैराक है, गहरे पानी में भी तैरना जानता है।
1: ये तय पाया है कि तुम्हें दरिया में शिकार करें।
2: मतलब दरिया की बड़ी मछली को उसने पहचाना नहीं? ये लो।
1: अल्लाह बरकत दे।
2: आज रात का वादा मत भूलना।
1: तुम्हारे ताबेदार हैं, तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं। क्या रात होगी आज की रात।

0: तुम्हारा मारी कहाँ है घटिया आदमी?
1: जैसे ही आप लोग पलटे वो लोग यहाँ से भाग गए।
2: ए बदबख्त कज़्ज़ाब, ऐसे खुल्लम खुल्ला झूठ,
0: यकीनन कोई विर्द पढ़कर उठ गया ना।
2: ओ मलून,
0: मैंने हर दरख्त के पीछे एक सिपाही मुकर्र किया है, ऐसे कैसे चला गया कि किसी ने उसको देखा ही नहीं?
1: मैं क्या अर्ज करूँ सरदार, आप तो हुरमला को जानते हैं, वो तो जिनों की तरह है।
0: अगर शराफत से मुंह नहीं खोलोगे तो तुम्हारी जबान काट के कुत्ते को खिला दूंगा।
2: हुरमला कहाँ छुपा हुआ है?
1: आप साहिब इख्तियार हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। सरदार, हुरमला गाय जैसा जिस्म रखता है, कोई चूटी नहीं कि जिसे नाखून के नीचे छुपा लिया गया हो। खुदा की कसम हुरमला भाग चुका है, अब आपके सिपाहियों ने उससे कैसे नहीं देखा, ये एक पहेली है।

0: तुम हुरमुला के गुलाम हो?
1: जी सरदार।
0: तुम लोगों ने अपने हाथ पैर क्यों बांधे हुए हैं?
1: हुरमुला ने बांधे थे ताकि हम कोई गलती करना बैठे।
0: तुम लोग हुरमुला के साथ क्यों नहीं गए?
1: उसने हमें लुकमा बनाया ताकि खुद भाग सके।
0: वो कितने आदमी थे?
1: हुरमुला और अरकूस। वो खुद यहां से तीर मार रहा था और अरकूस उस

0: हमारे चारों तरफ छुपने के ठिकाने थे। अगर हुरमला हमारे आने के बाद गया होता तो जरूर पकड़ा जाता। मेरे ख्याल से वो हमारे आने से पहले ही चला गया। हम पर तीर चलाने वाले यही दोनों अफराद थे। ये शख्स बहुत चलाक और मक्कार है, मगर हम जुदकोप करके इसकी जबान खुलवा लेंगे।
1: इन्हें हम अपने साथ ले चलते। इतनी सारी फौज, इतनी तदबीरें, वो भी सिर्फ एक सयाह गुलाम और बच्चे को कैद करने के लिए। ये बात मुख्तार को पता चलेगी तो तुम्हारी कोई इज्जत न रहेगी क्या? यजदान।
0: जी अमीर।
1: इन दोनों को अमीर के पास ले जाओ और पूरा वाकया उन्हें बता देना।
0: आप नहीं आएंगे?
1: नहीं।
0: क्यों अमीर?

0: जाओ और बदमाशों का हुलिया बनाओ और मुस्तकिल की आन पर नजर रखना। बिन कामिल, इस शख्स को कैद कर लो और इसके बेटे को आजाद कर दो।
1: अमीर, अमीर, मैं आपके पांव को चूमता हूँ। इस मासूम बच्चे पर रहम कीजिए, इसकी माँ मर गई है। खुदा की कसम, बेकसूर हूँ।
0: तुम बेकसूर हो? तुमने इब्लीस की मदद की है जिसने एक 6 महीने के शेरख्वार को तीर मारा, वो भी उस वक्त जब के बच्चा प्यास से तड़प रहा था और उसका बाप सिर्फ एक घूंट पानी मांग रहा था।
1: खुदा और उसकी तमाम मखलूक की लानत और मिलाप। उसका गुलाम था अमीर, चारा कोई ना था सिवाय इताअत के। खुदा और रसूल की कसम, अगर मुझे इस बच्चे की फिक्र ना होती,
2: उर्मिला की जान ले लेता।
0: लानत हो तुम लोगों पर, लानत हो तुम दोनों पर। औरतों और बच्चों के बहाने अपनी गैरत और मर्दांगी का सौदा कर बैठे हो। ले जाओ इसे।
1: अमीर, मैंने आपकी अदल इंसाफ से भरपूर दास्तानें सुनी है, मुझे खैर कर लीजिए, मगर इस बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए। इसका मेरे
0: औरतों और बच्चों के बहाने अपनी गैरत और मर्दांगी का सौदा कर बैठे हो। ले जाओ इसे।
1: अमीर, मैंने आपकी अदल इंसाफ से भरपूर दास्तानें सुनी है, मुझे खैर कर लीजिए, मगर इस बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए। इसका मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे बगैर वो मर जाएगा।
0: काफी है बिन कामिल, इसे और इसके बच्चे को जिंदान में डाल दो ताकि बाद में इसके जराइम का भी हिसाब चुकाएं।

0: रुक जाओ, रात को भटकने वाले मुंह से नकाब हटाओ, जल्दी करो।
1: माफी चाहता हूँ भाई, मैं नहीं हटा सकता।
0: ताज्जुब है, रात का राज।
1: ये रात का राज क्या होता है?
2: रात का राज एक खास जुमला होता है सरकारी अफराद की शनाख्त के लिए,
0: आम अफराद इसका राज नहीं जानते।
1: रात का राज अंधेरा है।
0: अंधेरा रात का रंग है, ना के राज। नकाब हटाओ इससे पहले कि तुम्हें सबक सिखाऊं।
1: नहीं कर सकता मेरे भाई, एक लाइलाज बीमारी है मुझे, मेरी सांस मोहलिक है, मुमकिन है कि खुदा ना खास्ता आपको ये मर्ज न लग जाए।
2: तो फिर तो तुम्हारा जुर्म और भी ज्यादा शदीद हो गया।
0: बेहिस आदमी, बेवकूफ, तुम लाइलाज मर्ज के साथ शहर में घूम रहे हो ताकि मुसलमानों को बीमार करो।
1: ऐसा हरगिज नहीं है, रात को कुछ दिल बैठने लगा तो गमजदा हालत में मस्जिद चला गया था कि खुदा से शफा तलब करूं। सजदे में गया तो अपने हाल से बेखबर हो गया। जब मस्जिद के खादिम ने मुझे आवाज दी तो मैं समझा कि रात खत्म हो गई और सुबह होने वाली।
2: कहानियां मत बनाओ। तुमने सुना हुआ है कि अमीर कूफा मुख्तार है और अली की मोहब्बत का बाजार अपने उरूज पर है, तो ऐसी कहानी बनाई कि हम खुश हो जाएं, हाँ?
1: मैं आपका मकसद नहीं समझा, कौन सी कहानी?
0: अहमक, जो शख्स नमाज में अपने हाल से बेहाल हो जाता था और उसके पैर से तीर निकाल लिया गया, उसे खबर तक ना हुई, वो सिर्फ अली थे।
1: जी हाँ बिल्कुल, इन बातों का मेरी गुजारिश से क्या ताल्लुक था?
0: उसका ताल्लुक जल्द ही समझ जाओगे, इसके हाथ पैर बांध दो।
3: किस जुर्म में भाई?
0: आजकल कातलाने हुसैन अली वालों का रूप धार लेते हैं ताकि मकारियों के जरिए कानून नाफिज करने वालों को धोखा दे सकें। मुझे यकीन है तुम उन्हीं में से एक हो, जिंदान में डाल दो इसे।
3: आपसे पनाह मांगता हूँ सरदार,

0: फिर मुझे कैद कर देंगे तो मैं मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी बचा लीजिए, रहम करें।
1: कुछ तो है जो इतना इल्तिमास कर रहे हो। जिंदान में क्या खौफ है, तुम पहचाने गए तो आजाद हो जाओगे।
0: जब तक मेरी पहचान होगी तब तक तो सारी जिंदगी कट चुकी होगी। रहम करो सरदार, मैंने हिसार तोड़ा है तो इसका जुर्माना दे देता हूं। मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूं।
2: चोरी की तो नहीं है?
0: खुदा की कसम हलाल के बिल्कुल पाक साफ है।
2: कितने दे रहे हो?
0: तुम्हें कितने चाहिए?
1: तुमने तो कहा था कि माशाल्लाह मालदार आदमी हो, तुम पे छोड़ा। जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम रात दिन कुत्तों की तरह पहरा देते हैं ताकि मुसलमान आराम से सो सके। जितना भी दोगे जाया नहीं जाएगा।
0: लानत है इस बेगैरती और खयानत पर। नमा का नाम कहेंगे। तुम अमानतदार हो या अमानतखार? मैं हूं खेसान अबू उमरा।
3: अब मैं समझा कि क्यों हुरमला जैसे मुजरिम बड़े मजे से कूफे में घूम रहे हैं और आजाद हैं। जब तक सिपाही रिश्वत खोर और चोर होंगे, हुरमला जैसे पे क्या रोना।
4: माफ कर दे, माफ कर दीजिए अमीर, मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दे, माफ कर दीजिए।
5: अरे ओ रात की राही, वहीं रुक जाओ।
6: मैं रात का राही नहीं हूँ सिपाही, तुम्हारा अमीर हूँ। मेरा नाम कियान है, कैसान अबू उमरा कहलाता हूँ।
5: जाहिल इंसान, कैसान है अबू उमरा अपनी मामूल की आदत के मुताबिक कुछ ही देर पहले अपने घर जा चुके हैं। मुझे यकीन है कि अभी भी वो अपने बिस्तर पर आराम कर रहे होंगे और हुरमला को मारने के ख्वाब देख रहे होंगे।
0: या साहिब-ए-वहशत,

शिमल और सनान जैसों को मार के तुम बहुत भूल गए थे ना, तुमने सोचा उर्मिला को मार के मैदान के बेरकीब शिकारी बन जाओ। ये रही उसकी करामत। उर्मिला सिर्फ हवाई बातें नहीं करता। मैंने पैगाम दिया था कि अगर तुमने उर्मिला का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सूख में रुला दूंगा। अगर तुम अब भी वही मक्खी बने रहना चाहते हो जो हर वक्त उर्मिला की रट लगाए रखती है तो कोई बात नहीं, तो वादा करता हूं कि अगली सर्प में तुम्हारा काम भी

0: सब ठीक है?
1: बिल्कुल अमन अमान है, परिंदों ने गोया कोई भेड़ देख लिया है।
2: आखिर उन्होंने हुरमला को जो देखा है।
3: तुमने कुमेश को मार डाला हुरमला?
4: हम फंस चुके हैं।

उर्मिला, आखिरी वक्त आ पहुंचा। तुम्हारे भागने का वाहिद रास्ता यह है कि तुम जल के धुआं हो जाओ। अब फैसला कर लो। मुख्तार बजाते खुद आया है तुम्हारी जान लेने। अगर मर्द हो तो आओ और

0: दिफा करो, लड़ने का असलाह भी तुम्हारी पसंद के ऊपर छोड़ा।
1: मुख्तार क्या चाहता है कि उसकी जान किस चीज से लूं, तीर से या खंजर से?
0: तुम अपने इस बेतुके तीर कमान से सिर्फ शीरख्वार बच्चों को शिकार करना जानते हो। शायद खंजर तुम्हारे ज्यादा काम आ जाए। एक खंजर तुम्हारा, एक खंजर अमीर मुख्तार का।

ताजुब है। मुख्तार शाह को मैदान में देख रहा हूं मैं। मुझे नहीं लगता था कि तुम शाही तख्त छोड़कर मैदान में आओगे। तुमने हमारी इस लड़ाई में बहादुरी को शर्त रखा है। एक खंजर तुम्हारा, एक खंजर मेरा। अब जबकि तुमने हुसैन के नाम पे अपने लिए कला सा बना लिया है और ताज और तख्त खरीद लिए हैं, हैफ है कि तुम ये ना जानो कि हुसैन ने आशूर में क्या क्या सहा है। कम से कम मैंने जो हुसैन के साथ किया है वो सुन लो, फिर मरना या मुझे मार देना। जब हुसैन के खीमों पर प्यास का गलबा बढ़ गया और हुसैन का शशमाह मैदान में आ गया, हुसैन ने उसे अपने हाथों पर उठाकर फरियाद की।

0: तीसरा तीर मैंने उस वक्त मारा जब हुसैन ने अपने दामन को उठाया ताकि अपनी पेशानी के पसीने को साफ करे। तीसरा तीर मैंने हुसैन के कल्प पर मारा।
1: बकवास बंद कर मैदान।

है। और याद रखना मेरे हबीब, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, खुदा की याद जो है ना, अल्लाह की याद जो है वो सबसे बड़ा जिक्र है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और खुदा खूब जानता है कि तुम अमल क्या कर रहे हो। तो आपने देखा कि नमाज जो है जनाब मूसा के लिए भी हमारे सामने आई, नबी करीम के लिए भी आई, और आगे चलते हम आपको मिसालें देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यह नमाज फकत हमारे आखिरी पैगंबर पे ही नहीं आई। जब से खुदा ने अपने नबियों को भेजा तब से खुदा का ये रवैया रहा है कि बंदा अपने आप को माबूद से जोड़ ले। उस जोड़ का नाम क्या है? सलात। एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह मरियम में कुरान मजीद का 19वां सूरा, आयत का निशान 54 और 55, 1954-55, वहां पे अल्लाह ने रब्बुल इज्जत होता है कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिकल वाद वकाना रसूलन नबिया वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात वकाना इंदल्लाहि मर्ज़िया। ए मेरे हबीब, याद करो जनाब इस्माईल को। इस्माईल अपने वादे में पक्के थे, सच्चे थे, खुदा के रसूल थे, खुदा के नबी थे। और उसके बाद जनाब इस्माईल की ये खूबी थी, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलात, जनाब इस्माईल अपने घर वाले को नमाज का हुक्म दिया करते थे, ज़कात का हुक्म दिया करते थे। वकान इंदल्लाह मर्दिया, और यही जनाब इस्माईल क्या थे? अल्लाह सुबहान व तआला की रजामंदी उसके साथ थी। मुसलमान, तुझे पता चल गया कि जब नमाज को तू अंजाम देगा तो इसके अंदर अल्लाह सुबहानहु व ताला की रजामंदी है। ये कौन थे? जनाब इस्माईल। क्या करते थे? अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। हमारे लिए क्या नहीं आया? मेरे आपके चट्टे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, चट्टी सरकार ने कहा, नहनो नामुरो सिब्याना बिस्सलाते वहुम बनीना खम्स सिनीन, हम अहले बैत हमारे बच्चों को जब वो बच्चे 5 साल के होते हैं तो हम उनको नमाज का हुक्म देते हैं। फमुर्रु सिब्यानकुम वहुम बनीना सबअ सिनीन, ऐ मुसलमानों, हम हमारे बच्चों को 5 साल में नमाज का हुक्म दिया करते थे, तुम हजरात अपने बच्चों को 7 साल में नमाज का हुक्म दिया करो। तो नमाज इस दीन का एक हिस्सा है। फोन आया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए नमाज की बात, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में कहां से शुरू करता है? नमाज की बात कहां से शुरू करता है तो हमें पता चलेगा कि एक और नबी का तज़किरा है। कौन? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। जनाब ईसा नबी नहीं बने, अभी तो गहवारे में पड़े हैं। लोगों ने जब जनाब मरियम पे शक डाला कि बच्चा कहां से आ गया, लोग आए थे, तो खुदावंद करीम ने इसका तज़किरा सूरे मरियम की 29वीं, 30वीं और 31वीं आयत 19, 29, 30, 31, जब लोग आए जनाब मरियम के पास तो खुदा ने ऐलान किया कि जनाब मरियम ने क्या कहा? फअशारत इलैह, जनाब मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। तो लोगों ने कहा, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, अरे जो छोटा बच्चा, अभी पैदा होने वाला बच्चा जो अपने महद में हो, गहवारे में हो, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, अरे जो गहवारे में बच्चा हो उसके साथ हम बात कैसे कर सकते हैं? 30वीं आयत आई, वो बच्चा बोलने लगा, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानिल किताब व जालनी नबिया, बेशक बेशक मैं खुदा का बंदा हूँ, उन्होंने मुझे किताब भी दी है और मुझे नबी भी बनाया है। उसके बाद 31वीं आयत, व जालनी मुबारकन ऐनमा कुंत व औसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुमतु हय्या। अभी ईसा कहाँ पर है? गहवारे में है, छोटे बच्चे हैं, लेकिन खुदावंद करीम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से क्या कहलवा रहा है
कि खुदा ने मुझे बाबरकत बनाया है, जहां पर भी मैं हूं, और उसी खुदा

होता है, घड़ी से लाख महंगा उसका वक्त होता है, जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। अब यह दुनिया के मामले के लिए है, काश मुसलमान अपनी नमाज के लिए ऐसा हो जाए। अब मौला का कोट भी कर दूं, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, मौला ने कहा अल वक्त का सैफ इन लम तक्ताहु यक्ताउक, ऐ मुसलमान ये वक्त जो है ना वो तलवार की मानिंद है, अगर तूने इस तलवार को तोड़ नहीं डाला तो ये वक्त की तलवार तुझे मार देगी, तुझे तोड़ डालेगी। ऐ मुसलमान बेदार हो जा, अगर तेरी जिंदगी में इस नमाज के लिए कोताही है तो। आपने देखा जनाब मूसा का तज़किरा आया नमाज के साथ, नबी करीम का तज़किरा आया नमाज के साथ, जनाब इस्माइल का तज़किरा आया नमाज के साथ, जनाब ईसा का तज़किरा आया नमाज के साथ। अब इस मामले में एक ऐसी बात कुरान मजीद और दीन की है जिसका नाम है माँ बाप। क्या? माँ बाप। लेकिन मैं आज आपको साबित करूंगा कि माँ बाप से ज्यादा अगर कोई चीज मुहिम है तो नबीउल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें साबित कर दी। आइए कुरान मजीद की तरफ। कुरान मजीद का जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम का सूरा है, पता है कारी साहब कौन सा है? अरे चौदह मासूम को मानने वालों, चौदहवा सूरा सूरत इब्राहिम चैप्टर 14, आयत का निशान है 40 और 41, 14, 40, 41। वहां पर ऐलान रब्बुल इज्जत होता है, जनाब इब्राहिम ने कहा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, तूने मेरी दुआ सुन ली, मुझे बेटा इनायत कर दिया, अब जनाब इब्राहिम दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अब देखिए जनाब इब्राहिम की दुआ क्या है, जाते जाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज्अलनी मुकीमस्सला वमिन धुर्रियती रब्बना वतकब्बल दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाजियों में से शुमार करना, मेरी आलो औलाद को भी नमाजी बनाना, रब्बना वतकब्बल दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरी दुआ को कबूल कर ले। उसके बाद क्या आता है 41वीं आयत में, रब्बना फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। आपने देखा जनाब इब्राहिम ने कहा खुदाया मुझे माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर दे, मोमिनों को माफ कर दे, कयामत के दिन सबको माफ कर दे। मैं कहूंगा या नबी अल्लाह आपने मां बाप से पहले नमाज को याद किया? पहले नमाज रब्बिज्अलनी मुकीमस्सला वमिन धुर्रियती रब्बना वतकब्बल दुआ, उसके बाद जनाब इब्राहिम ने कहा रब्बना अग़फिरली वले वालिदैया। ए मुसलमान जो भी नबी कुरान मजीद में जगह जगह पे परवरदिगार आलम ने हमें बता दिया कि अरे मुसलमान ये नमाज जो है ना वो फकत तेरी उम्मत के लिए नहीं, रसूल की उम्मत के लिए नहीं, हर नबियों के ज़माने में ये नमाज थी। क्यों? क्योंकि हर नबी अल्लाह का नबी था और हर उम्मत को अपने आप को खुदा से जोड़ना था और खुदा से जोड़ने का नाम है नमाज। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुसलमान तू जाफरी नहीं है, जाफरी है, इसलिए छठे इमाम ने क्या कहा लिकुल्ले शहीन वज व वजह दीने कुम सलात, हर एक चीज की कोई ना कोई चेहरा होता है, हर एक चीज की कोई ना

कोई पहचान होती है। ऐ मुसलमानों सुन लो, तुम्हारा जो दीन है ले कुल्ले शहीन वज वो वज हो दीन एक मुसलात, तुम्हारा जो दीन है, तुम्हारा जो मजहब है, तुम्हारा जो धर्म है, इसका अगर कोई चेहरा है तो वो चेहरे का नाम है नमाज। लेकिन नमाज हमें अभी याद नहीं आएगी शायद। लोग कहा करते हैं कि अगर नमाज ना पढ़े तो क्या होगा, हमने तो नमाज का अजाब कहीं सुना नहीं, नमाज न पढ़ने का अजाब, ये नमाज क्या चीज है। ऐ मुसलमान अभी तुझे याद नहीं होगा, एक वक्त आएगा कि जब तुझे ये नमाज आएगी। कौन सा वक्त होगा वो जी? कब्र का वक्त, उससे भी पहले। कब्र का वक्त नहीं, उससे भी पहले। परवरदिगार आलम ने सूरह अल मुमिनून कुरान मजीद का 23वां सूरह का निशान है 100 चैप्टर 23 वर्स नंबर 99 एंड 100। ऐलान रब्बुल इज्जत होता है, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हत्ता इदा जाहदुमुल मौत हदर अहदुमुल मौत قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون। बंदे की जब मौत आएगी, उनमें से एक की जब मौत आएगी, वो क्या कहेगा? قال رب ارجعوني, वो कहेगा खुदाया मुझे दुनिया में वापस भेज। لعلي اعمل صالحا فيما تركت, ताकि मैं अच्छे काम करने जाऊं, जो काम को अधूरे छोड़कर मैं आया हूं उन काम को पूरा करके मैं आऊं। खुदा ने जवाब क्या दिया? कल्ला, ये नामुमकिन है। मरने के बाद वापस जिंदा होना, वापस दुनिया में आना नामुमकिन है। कल्ला इन्हा कलिमतुन हुआ काइलुहा, ये तो फकत जबान से बोलता है। क्यों? खुदा जानता है, खुदा अपने बंदे को जानता है। मैं अपनी जबान में कहता हूं कि अगर इसको वापस भेजा गया तो वही का वही रहेगा, फिर दोबारा कहेगा वापस भेज, यहां आकर वापस कोई जाने वाला नहीं। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअथून, ये मरने के बाद जो है ना एक बरज़ख की जिंदगी है, यहां तक कि जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा। ये बंदा कौन है कि जो कहेगा खुदा मुझे वापस भेज? सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान कर रहे हैं ये कोई और नहीं होगा। आपने कहा इन्ना तारिक सलात यसअलु रजअत इला दुनिया, जो नमाज न पढ़ने वाला होगा, जो नमाज को अंजाम न देता होगा, ये वही आदमी होगा कि जो कहेगा कि खुदाया मुझे वापस भेज। ऐ मुसलमान वेक अप, बेदार हो जा, जारती जाएगा त्यारती सवार। अगर तेरी जिंदगी में नमाज की कोई हैसियत नहीं, नमाज का कोई हिस्सा नहीं, तो समझ ले कि ये नमाज के बगैर तू मुसलमान नहीं रह सकता। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आपने कहा मा बैनल इस्लाम वल कुफ्र तरकु सलात, अरे इस्लाम और कुफ्र के दरमियान का फासला कुछ भी नहीं, बस बीच में नमाज को छोड़ दो, मुसलमान से काफिर हो गए। मा बैनल इस्लाम वल कुफ्र तरकु सलात, नमाज को अगर छोड़ दिया तो इस्लाम में से खारिज होकर कुफ्र की तरफ चले जाओगे। ऐ मुसलमान तेरी जिंदगी में नमाज की हैसियत क्या है? तू नमाज को कितनी पाबंदी के साथ अदा करता है सोच लेना। अगर नमाज तेरे लिए मुहिम नहीं तो छठी सरकार ने यह भी कह दिया है ना, हमें तो यही सुनाया गया है, क्या रोको मत जाने दो। और ये छठे इमाम क्या कह रहे हैं? ला तनालु शफाअतु ना मन इस्तखफ्फ बिस्सलात, अरे जिन्होंने नमाज को हल्का समझा उसकी शफाअत हम उनको नहीं देंगे। तो अब सच्चा कौन, ये पगड़ी वाला कि छठी

सरकार सच्चा कौन? ये जो मिंबर से बोलने वाला कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जिनका लकब ही सादिक हो, वो खुद कह रहे हैं, ऐ मुसलमान हमारी शफात तुम्हें नसीब नहीं होगी अगर नमाज को हल्का समझा। अरे कयामत के दिन क्या होगा? हम सब नमाज पढ़ते हैं ना इंशाअल्लाह ताला। देखिए जनाब, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश तो नहीं, लेकिन अगली बार कहीं मैं आया आपके दरमियान इंशाअल्लाह तो नमाजी और नमाज गुजार का फ़र्क भी बयान कर देंगे। एक होता है वो वाला नमाजी कि जो उठबे इस नमाज को अंजाम देता है, बस उठबे एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मेरी नमाज क्या है? ये नमाज जो है इसके पीछे आपको पता है कौन पढ़ा है? आपको नहीं पता, आपको शायद नहीं पता। एक खुदा की ऐसी मखलूक है कि जो ये नमाज के पीछे पड़ा है, लेकिन मुसलमान तुझे पता भी नहीं कि कब तू उसकी गिरफ्त में आ गया है। कौन? इब्लीस, शैतान। कुरान के अल्फाज को देखिए किस तरह से परवरदिगार आलम ने हमको आगाह किया है। हम वो हजरत हैं कि जो इन्नमा को बहुत जानते हैं। इन्नमा, इन्नमा वाली कौन सी चीज आपको आती है? अब्बास नौजवान, कुछ तो आता होगा ना यार। कारी साहब, इन्नमा वाली कुछ चीज आपको पता है? कोई भी चीज बोलिए, मैं ही पढ़ देता हूं। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत तथहीर भाई, सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत, ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, क्या हुआ? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज़्ज़ा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाह। कुरान में एक दूसरी आयत है जहां पर है इन्नमा युरीदु शैतान। किसी ने हमको सुनाया है? ये अहले बैत वाली आयत है, हमें पता है। ऐसे इन्नमा बहुत हमें याद है। एक और इन्नमा है जानी पहचानी हमारी, कोई और? कारी साहब, शबाश, सूरह मायदा की 55वीं आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियकुमुल्लाहु वरसूलुहु वल्लदीना आमनु वल्लदीना युकीमुना सलाता वयुतूना ज़कात वहुम राकिऊन। आया विलायत, ये भी क्या है? इन्नमा वाली आयत है। एक और जानी पहचानी आयत है सूरह हुजरात की 10वीं, ये पढ़िए मिनाज भाई, अभी कुछ दिनों पहले तज़किरा साथ में मिलकर हुआ था जी। ना भाई, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ये सब क्या है? इन्नमा, इन्नमा है क्या? इन्नमा है हर्फ हस्र, किसी चीज को महदूद करना। कल भी एक आयत पढ़ी थी 49:15, इन्नमल मुमिनून, वहां पर भी इन्नमा था। ये हजरात फकत मोमिन हो सकते हैं। तो इन्नमा युरीदुल्लाह हम जानते हैं, क्या हम ये जानते हैं कि इन्नमा युरीदु शैतान क्या है? तो आइए कुरान मजीद की तरफ। परवरदिगार आलम ने सूरह मायदा कुरान मजीद का 5वां सूरा आयत का निशान 91वां, चैप्टर 5 वर्स नंबर 91, ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बगदा फिल खम्र वल मैसर व यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस्सलात फहल अंतुम मुंतहून। अरे मुसलमानों, याद करो और रखो कि शैतान इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। वो शराब से और जुए से वो इतना ही चाहता है कि मोमिनीन के दरमियान आपस में क्या हो, दुश्मनियां फैलाए, बुग्ज़ो कीना आए। और उसका मुद्दा क्या है? इन्नमा युरीद क्या है? और वो क्या चाहता है? यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, वो चाहता है कि तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक दे, और वो चाहता है कि वो तुम्हें नमाज से रोक दे। तो शैतान का काम क्या है? शैतान का इरादा क्या है? शैतान की उम्मीद क्या है? शैतान का मिशन क्या है?
يصدكم عن الصلاة.

इसी करबला में आशूर के दिन आशूर वालों की नमाज कैसी थी? मसाहिब में आप सुनते हैं ना कि नमाज खौफ को जब अदा करने का वक्त आता है,

people always revere. Log hamesha taazim karte hain. People revere the ones who have been killed. Hamesha duniya ke andar jisne bhi deen ke liye jaan di hoti hai, log uski taazim karte hain. Chahe John the Baptist ho, chahe David ho, Moses ho, puri duniya ka usool hai. Mujhe nahi pata kitne log hain bhi mere saath. Puri duniya ka usool hai, jab koi kisi ke liye jaan de deta hai to uske deen ke jo peshwa hote hain na, unke mazar banaye jaate hain. Yahudi Isai bhi mazar banate hain. पूरी दुनिया के अंदर जहां पे जला ना दिया जाए वहां पे मजार बनाया जाता है और मजार की कोई मुखालफत नहीं करता. ये बाद में मुखालफतें शुरू की गईं. किन्होंने मुखालफत की? जिन्होंने देखा कि भाई जिसकी भी ताजीम हो रही है वो तो इन्हीं का है. हमारा कोई इस लायक है नहीं जिसकी ताजीम की जाए. हमारे वाले तो वो हैं जिनकी कब्रों पर लोग आके ठोकरे मार रहे हैं. तो जाने ग्राम में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा यजीद की तो कोई ज्यारत के लिए आएगा नहीं, यजीद जैसों की ज्यारत पे कोई आएगा नहीं, तो क्या किया जाए? जिनकी ज्यारत गाहें बनाई जा रही हैं उनकी ढा दी जाए. जब ज्यारत गाह ढा दी जाएगी, यू नो डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो लोग फिर हमारे वालों को देखेंगे. नहीं है लोग देखें. जनाब यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? यूसुफ को कुएं में डाल दो तो बाबा सिर्फ हमें देखेंगे. अल्लाह ने कहा तुम्हें भी नहीं देखेंगे, मैं बिनाई छीन लूंगा. अल्लाह के उसूल हैं. कहा तुम हसद में यूसुफ को इसलिए दूर कर रहे हो ताकि याकूब नबी तुम्हें देखें, वो तुम्हें भी नहीं देखेंगे. ऐजाने गिरामी ये हर जगह पे जनाब यूसुफ के सगे भाई थे. दे वर ब्लड ब्रदर्स. सगे भाई थे, माँ बाप तवज्जो, बाप एक था, फिर भी इतना हसद. और जहां सगे भाई ना हो, सिर्फ दीन में भाई बने हो, वहां अगर किसी को अली से हसद हो जाए वो फिर ताज्जुब की बात नहीं है. यहां ताज्जुब नहीं करना चाहिए. ये क्या हुआ, कैसे हो सकता है हसद हो जाए? ये तो आज आम है हसद. इब्ने आदम, जनाब आदम के बेटे हाबिल काबिल के अंदर भी हसद हो गया था. पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं. तो आम तौर से जहां पे कोई जान देता है ना, वहां पे कुछ आसार लगाए जाते हैं ताकि लोग विजिट करने के लिए आए. लोग अभी भी जाते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट को विजिट करते हैं, हजरत दाऊद को, डेविड को, मूसा, सब अंबिया को लोग विजिट करने जाते हैं. कोई नहीं कहता बिदत. इस्लाम में भी शुरू में किसी ने बिदत नहीं कहा. इस्लाम में किसी ने बिदत नहीं कहा. फिर एक मोहम्मद इब्ने तैमिया नामी आदमी आया. उसने देखा हमारा किसी बुजुर्ग का एहतराम नहीं हो रहा, तो उसने कहा नहीं ये शिर्क है, ये गुनाह है. तो वहां तीन अल्फाज उसने इजाद किए, शिर्क, बिदअत, हराम. तीन ही अल्फाज आते हैं इन्हें, चलते रहिएगा. तो अब बिदअत यानी इदखाल मा लैसा फिद्दीन फिद्दीन. बिदअत की डेफिनेशन ये है कि जो दीन में नहीं है उसे दीन में दाखिल किया जाए. कब्रों की ताजीम पहले से दीन में है. नहीं आप लोग नहीं है मेरे साथ. मुझे आज साबित करना है कि मौला हुसैन ने जो कुछ किया है वो सारे इंसानों के लिए किया, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ शियों के लिए नहीं, सारे मुसलमान, सारे इंसानियत के लिए. अजाने की रामी कब्रों की ताजीम इस्लाम में है, दीन में है. मजमे की तवज्जो हो. आपको पता है कि जब आप हज पे जाते हैं तो वहां पे एक शादरवान या हजर इस्माइल है, सेमी सर्कल बना हुआ, देखा है ना आपने तस्वीरों में, देखोगा एक सेमी सर्कल बना हुआ, उसे कहते हैं हजरे इस्माइल. पहले दोनों तरफ से खुला था. जो पहले पुराने हाजी हैं वो आपको बताएंगे. अभी क्या किया उन्होंने, जब आप तवाफ कर रहे होते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज. क्यों एंटी क्लॉकवाइज करते हैं? क्योंकि पूरा निजाम शमसी, द होल सोलर सिस्टम गोज एंटी क्लॉकवाइज. नहीं लो, पूरा निजाम शमसी भी आप साइंस से पूछ लीजिए कि सूरज बीच में है, सारे के सारे सितारे, सैारे, जो प्लैनेट्स तवाफ करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं. अभी साइंस ने डिस्कवर नहीं किया था. पैगंबर ने उस जमाने में कहा तवाफ ऐसे करना है. अब पता चला साइंस से पहले जो बता जाए वो वही दीन हक होता. अभी भी सारे मजमे की तवज्जो रहे. मैं हाथ बांध के दरखास्त कर रहा हूं मजमे की तवज्जो. तो अब हजरे इस्माइल, तो सारे चाहे हनफी फिक हो, हम्बली हो, शाफई हो, या मालिकी हो, या जाफरी हो, या हत्ता गैर मुकल्लिद हो, जैसे अहले हदीस, अहले हदीस गैर मुकल्लिद हैं या अखबारी हो, मुकल्लिद हो गैर मुकल्लिद, जितने भी मुसलमान हैं सब कहते हैं कि जब तवाफ करेंगे तो हजरे इस्माइल शुड बी अ पार्ट ऑफ योर तवाफ. यू हैव टू डू तवाफ फ्रॉम आउटसाइड द सेमी सर्कल. हजरे इस्माइल से बाहर से तवाफ करना है, यानी आपके तवाफ के अंदर हजरे इस्माइल आए काबे के साथ. अब हजरे इस्माइल सबने लिखा, तो पहले खुला हुआ होता था, अब उन्होंने बंद कर दिया. अब उन्होंने बंद कर दिया शादरवान को बंद. क्यों?

क्योंकि बहुत से लोग अंदर से चले जाते थे, कहते नहीं आपका तवाफ बातिल, मुतव्वे पता है, मुतव्वा चले नहीं पता, अच्छा ही है। तो ये रिलीजियस पुलिस बिठा रखी थी सऊदी ने वहां पे आले से, उन्होंने कहा भाई जो अंदर से जाए उसको टोको डंडा मारो, कहो कि भाई बाहर से जाओ। उन्होंने कहा डंडे मार मार के हम थक गए, बंद कर दो इसको। तो उन्होंने वहां से बंद कर दिया। अब आप जाएंगे उमरे पे, हज पे जाएंगे, देखेंगे वहां से कंप्लीटली क्लोज्ड है सारे मजमे की तवज्जो। उसे कहते हैं हजरे इस्माइल, पूछिए यहां क्या है। तो वहां सबने लिखा है मुसलमानों ने, हजरत हाजरा की कब्र है, हजरत इस्माइल की कब्र है और 18 अंबिया की कब्रें हैं। अगर कब्रों का तवाफ बिदत होता तो पहले रसूल खुदा कहते कब्रें उखाड़ो, ये सारा कुछ गिराओ। ऐज़ाने गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम के अंदर जब हज को वाजिब करार दिया, तवाफ रुकन है, तवाफ ना करो तो हज नहीं। और तवाफ में अंबिया की कब्रें मौजूद हैं, कब्रों की ताज़ीम, पैगंबर कब्रों पे गए हैं। अब तो जन्नतुल बकी के दरवाजे पे भी उन्होंने लिख दिया है कि सही बुखारी के अंदर है कि कुंतु अनहाकुम मिन ज़ियारतिल क़ुबूर, आई यूज़्ड टू स्टॉप यू फ्रॉम विजिटिंग द ग्रेव्स, मैं तुम्हें पहले ज़ियारत कब्रों की ज़ियारत से रोका करता था। फ़ज़ूरूहा, अब मैं खुद कहता हूँ जाओ जाके ज़ियारत करो। जब आपके बुजुर्गों तक ने कह दिया, पैगंबर कहते थे बुजुर्गों की मान लो, इब्ने तैमिया क्यों क्यों मान रहे हो, उसने कौन सी हदीस की किताब लिखी है, पता नहीं मजमा है या नहीं है। मेरी बातें सबको समझ में आ रही, पहुंच रही हैं, मुझे एक आधा बंदा बताते कि बातें पहुंच रही हैं। भाई मजमा चलता रहेगा तो मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करूंगा। तो मौला हुसैन ने दावत की, जो भी दावत देता है उनकी कब्रें बनाई जाती हैं। आए जरा एक और मैं आयत पेश कर दूं, सूरह कहफ, द केव, असहाबे कहफ का सूरह जहन में है न? अब वहां पे अल्लाह खुदा अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहा है कि और वो अफराद जिनको उनके ऊपर बनी ये जो असहाबे कहफ थे, गलबू अला अम्रहिम, उनके अम्र के ऊपर गलबा पा लिया, फबनो अलैहिम मस्जिदा, तो उन्होंने वहां पे एक मस्जिद बना दी। नहीं है मजमा, अलैहिम उलमा मौजूद है, अहले इल्म मौजूद है, सबके सामने पेश करो, ये नहीं कहा उनके पास, ये जो तर्जुमा किया गया सऊदी अरब से पास, मैं चैलेंज देके कह रहा हूं जरा पास का लफ्ज बता कुरान में कहां आया है, मैं चैलेंज दे रहा हूं, अलैहिम उन पे मस्जिद बना दी। अगर मस्जिदों के अंदर मजार बनाना बिदत होता तो अल्लाह वहीं पे कह देता, ये बिदत है। अल्लाह फरमा रहा उन पे मस्जिद बनाई, अल्लाह को ये मस्जिद बनाना इतना पसंद आया, अल्लाह ने सूरह कहफ में लिखा। और अभी भी अगर साथ हो मेरे तो सरवर कायनात ने खुद फरमाया कि मुझे मेरे घर में दफनाना है, ये शिया सुन्नी किताबों में ये नहीं है, सबने लिखा, पैगंबर ने फरमाया मुझे जन्नतुल बकी में नहीं, मुझे मेरे घर में दफनाना। घर में, तो घर में चार दीवारी थी ना, वेर दे नॉट वॉल्स एंड रूफ। तो पैगंबर अगर बिल्डिंग बनाना बिदत होता तो पैगंबर क्यों कहते मुझे बिल्डिंग में घर में दफना देना, ये घर में दफनाना सुन्नत नबवी है, बिदत नहीं है। अज़ाने के रामी, फिर यहां तक कहते हैं सहाबा वहीं पे पैगंबर की जियारत के लिए आते थे, और घर में कौन रहता था उस वक्त, बोले उम्महातुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन रहती थी, 9 अजवाजे पैगंबर घर में रहती थी, वो सब जियारत करने आती थी। अगर बिदत होता तो उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हुन्ना पैगंबर की नजियारत करती और कहती थी घर गिरा दो, अब तो पैगंबर को दफना दिया। सारी उम्महातुल मोमिनीन की जियारत करना बता रहा है, जियारत कुबूर बिदत नहीं है। वो उम्मत के बेटो, मुल्लाओं की ना मानना, माओ की मान लो, माओ ने बताया है, माओ ने बताया है कि हम पैगंबर की जियारत करते थे। ऐज़ाने गिरामी, अब यहाँ जनाबे सरवर का जनाबे सैयद शहदा के लिए जितना कुछ बनाया जाए, अब यहाँ जो पेश कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े हमारे आलिम सैयद शरफुद्दीन मूसवी अल आमिली जबल आमिल लुबनान के, जिनकी किताबें अन्नस वल इश्तिहाद, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है द राइट पाथ के नाम से, अल मुराजात, इसी तरह से उनकी बहुत ज़्यादा किताबें अल मसाइल अल फ़िक़हिया, उनकी 7-8, जितने भी मेरे अरब दोस्त थे जो कन्वर्टेड थे वो सब कहते थे उनकी किताबें पढ़ के हम शिया हुए हैं। तो बहुत बड़े आलिम हैं सैयद शरफुद्दीन मूसवी अल आमिली, लुबनान के हैं, और हमारे उलमा फ़ुक़हा इनका बहुत एहतराम करते हैं। ये हज पे गए हैं 60s में, दौर था शाह फैसल का, फैसल का नाम सुन रखा, शाह फैसल आले सऊद इबन अब्दुल अज़ीज़, सब कुछ बता दिया, पूरा शजरा बता दिया। तो अबेजाने ग्रामी शाह फैसल जो किंग था सऊदी अरेबिया का, उसको पता चला सिर्फ

शरफुद्दीन मूसवी आ रहे हैं, तो उसने इनवाइट किया का खाने पे इनको बुला लीजिए। जब वो आए तो एक सवाल किया, सैयद शरफुद्दीन मूसवी कहते हैं कि फैसल ने मुझसे सवाल किया, कहा अब 20th सेंचुरी आ गई है और दुनिया जो है वो चांद पे जाने की बातें कर रही है, आप लोग अभी तक ये सोने चांदी की जरी के बोसे दे रहे हैं, नजफ करबला के अंदर सोने चांदी की जरी लगाई है, जन्नतुल बकीम में मट्टी गारे के लोग बोसे देते हैं शिया, तो ये इसको क्यों नहीं रोकते आप इतने बड़े आयतुल्लाह हैं। वो कहते हैं कि उसी वक्त मेरे जहन में ख्याल आया मैं इसको इल्मी जवाब दूंगा बेचारा बादशाह, मैंने पहले भी अर्ज किया था ना ये खलीफा वगैरह बादशाह वगैरह ये दादा पढ़े लिखे तो होते नहीं कि आप इंटेलेक्चुअल दलील दें, कुरान बताएं, हदीस बताएं, बेचारे पैदल लोग होते हैं। अब ये अकल व शऊर से पैदल, कभी मैं कुरान की आयतें पढ़ूंगा हदीसें पढ़ूंगा इसे क्या समझ में आएगी, तो कहते हैं उसी वक्त मैंने तवस्सुल किया बाबुल हवाइज से, कहा बाबुल हवाइज मुझे ऐसा जवाब दे बादशाह को समझ में आए। कहा अभी मैं तवस्सुल कर ही रहा था कि एक आदमी ने आवाज दी का बादशाह सलामत, एक पुराने जमाने के कुरान के कुछ औराक मिले हैं, द पेजेस ऑफ कुरान हैव बीन फाउंड फ्रॉम ओल्डन डेज, तो कहा कि ले आओ फौरन ले आओ। क्या जैसे ही वो लेके आए ना तो मखमल के कपड़े में लिपटा था, सोने की तारे थी, बादशाह सलामत खड़े हुए, उन्होंने जैसे ही हाथ में लेके चूमा आंखों से लगाया, कहने लगे मैं वहीं खड़ा हो गया, बेदात शेर हराम। तो कहेंगे फैसले का सैयद अच्छे खासा आपका दिमाग काम कर रहा था, अभी आपने खाना खाया एकदम से आप चीखने लग गए यहाँ पे सर। कहने लगे तुम्हारे ये जो मस्जिद मस्जिदुल हराम में मस्जिद नबी के अंदर तुम्हारे भी लोग तो चीख चीख के कहते ना बिदत शिर्क हराम, तो एक मरतबा परेशान हुआ क्या, फिर क्या भाई ये बिदत शिर्क हराम, इसीलिए मैंने कहा क्या कैसे बिदत कैसे शिर्क कैसे हराम, ना मैंने कहा ये मेरा खुदा है, अल्लाह का कलाम है, मैं चूम रहा हूं, सोने की तारों को चूम रहा है तू, ये मखमल के कपड़े को चूम रहा है तू, वेलवेट है ये सारा, तू क्यों, क्या कि नहीं मौलाना अकल को सैयद अकल को होश, ये अंदर जो कुरान है मैं कुरान की वजह से चूम रहा हूं, का हम भी सोने चांदी की जरी के बोसे नहीं देते, वो जो अंदर अली है अंदर हुसैन है जरी, तवज्जो फरमा रहे हैं अजान के राम, अजान के रामी, जब इंसान नस्बतों का पास रखता है उसे अंदाजा हो असरात, आप होता है ना कि इंसान बाज़ का कहता है कि भाई ये मुद्दतों बाद कोई मिला है तो कहा कहाँ से आकर, मैं ज्यारत से आ रहा हूँ, उसे लोग गले लगा लेते हैं, होता है या नहीं होता, कभी क्या बात है आपने गले लगा लिया, कहा आप करबला से आए हैं, करबला जाने वाला इतना मोहतरम, और जिस वजह से मोहतरम है वो हुसैन कोई मोहतरम नहीं, मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरामी, जाने गिरामी ये अजमतें हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, कहा हम गारे मट्टी के बोसे नहीं देते, वो जो अंदर नबी हैं, वो जो अंदर आले नबी हैं हम उनके बोसे देते हैं। जाने गिरामी हम इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ज़ियारत, वी वॉन्ट टू विजिट द होली, हम जा रहे हैं किसकी, देखने के लिए पैगंबर को, अब वहां पे हम उनको डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमें देख रहे हैं। अजान ग्रामी मौला हुसैन ने क्या किया, पूरा एक निजाम, दीन को बचाया, इस्लाम को बचाया, कुरान को, आज कोई नमाज ना पढ़ता, अगर मौला हुसैन यजीद की बैत कर लेते शहादत ना देते, लोग कहते मैं क्यों अल्लाह को मानूं जब हुसैन से अफजल कोई नहीं था, हुसैन ने बैत कर ली तो मैं अल्लाह को क्यों मानूं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, जब हुसैन इब्ने अली से उस वक्त कोई अफजल नहीं था, उन्होंने बैत कर ली और उन्हें पता भी था ये हाथ मेरा हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ यही यदुल्ला है, ये रसूल खुदा का हाथ है, ये अली मुर्तदा का हाथ है, ये सैयदा का हाथ है, जब उन्होंने ही अपना हाथ यजीद के हाथ में दे के बैत कर ली, मैं फिर अल्लाह को क्यों मानूं, मैं क्यों कुरान को मानूं, मैं क्यों नमाज पढ़ूं। ऐजाने गिरामी सारे के सारे हाजी हज करने वाले मक्के में रुक गए, हज बचाने वाले करबला चले गए, अजाने के रामी जनाबे सैयद शहदा ने नमाजें बचाई, ये इसलिए हर इबादत के बाद आप कहते हैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अजाने के रामी क्योंकि हर इबादत के बचाने वाली हस्ती का नाम इमाम हुसैन है। आप अगर तवज्जो कर लेंगे अबा अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह के बाबा, वो फादर ऑफ अब्दुल्लाह, मौला हुसैन के हर बेटे का नाम अली था, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हर बेटे का नाम अली है, लेकिन कुनियत पैगंबर ने दी थी अबू अब्दुल्ला, ये नमाज के बाद
السلام علی الحسین کہتے ہیں؟ نہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔

बैठे थे सब, तो उन्होंने कहा कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेने के लिए, इमाम हसन हुसैन को लेने पैगंबर जनाब सैयदा के घर गए, तो कहा ईद का दिन था, तो जाके जनाब रसालत मआब ने जनाब सैयदा से फरमाया, कहा बेटी मेरे नवासे तैयार हैं ईद का दिन? कहाँ बाबा, दोनों को मैंने तैयार कर दिया। तो मौला हसन आए, हरे रंग की सब्ज ग्रीन कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था, और मौला हुसैन ने सुर्ख रंग का, मौला हसन को ग्रीन कलर का। तो रसूल खुदा ने फरमाया मेरे बेटों मेरे नवासों मेरे साथ चलो, ईद का दिन है, हम नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे। तो अब वो अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं हमारी सब किताबों में, हदीसी किताबों में है कि एक मरतबा मौला हसन ने फरमाया, कहा नाना सब लोग सवारियों पे आ रहे हैं, ऊंटों पे हॉर्सेस पे घोड़ों पे आ रहे हैं, हमारी तो सवारी नहीं। पैगंबर ने नहीं फरमाया वो दूर से आ रहे हैं, आपका तो घर मस्जिद के साथ वाला घर है, नहीं है लोग, था या नहीं था? मस्जिद का साथ वाला घर मौला अली का था। जब पैगंबर ने कहा ना सारे अपने दरवाजे बंद कर दो इल्ला बाबा अली, सिवाय अली के घर के दरवाजे के सारे दरवाजे मस्जिद में ना खुलें, तुम सुबह सुबह उठते हो गुस्ल नहीं होता, आइंदा कोई मस्जिद में नहीं आए। तो बड़े बड़े बुजुर्ग साहब आए, या रसूल अल्लाह अली का दरवाजा खुला है, अगर खिड़की मेरे घर की भी रह जाए, यू नो विंडो रहने दें। पैगंबर ने कहा नहीं आप विंडो भी बंद कर दें। कहा या रसूल अल्लाह मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अली जवान ने उनके घर का दरवाजा खुला है, अगर विंडो रह जाएगी तो क्या होगा? कहा कि ये हुक्म मेरी तरफ से नहीं अल्लाह से है, अल्लाह ने कहा हर दरवाजा बंद कर दें। तो यहां तक के हत्ता हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर के चचा दीगर सब, कहा या रसूल अल्लाह अली के घर का दरवाजा सिर्फ अकेला मासूम है, अली मासूम, जौजा मासूमा, बेटे वाहिद घराना जहां सब मासूम हैं। तो मस्जिद के साथ वाला घर मौला अली का। पैगंबर ने नहीं कहा भाई आपका तो घर का दरवाजा खुलता मस्जिद में आ जाते हैं, तो आपको क्या जरूरत है सवारी की? अल्लाह अकबर, अजमत सरवर कायनात की कितनी मोहब्बत है। कहा मेरे बेटो किसने कहा आपकी सवारी नहीं, आपके नाना आपकी सवारी है। बड़े बड़े सूफिया उलमा मुहद्दिसीन ने कहा, कहा आपके नाना आपकी सवारी हैं। तो फौरन मौला हसन को उठाया, कांधे पे बिठाया, 3 बरस के मौला हसन, 2 बरस के मौला हुसैन, दोनों को कांधों पे सवार किया। कहा आप दोनों मेरे कांधों पे जाएंगे। जैसे ही मस्जिद में आए, पहले खलीफा सामने से आ रहे थे, उन्होंने कहा नेमल मरकब, शहजादो कितनी प्यारी सवारी मिली है। तो तमाम पाकिस्तान के टेलीविजन पे सूफिया ने कहा, पैगंबर ने फरमाया आप देखते नहीं सवार कितने प्यारे हैं। सब मिलके जवाब दें, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ाने गिरामी। अज़ाने गिरामी, इतनी कुर्बानियों के बाद कोई हुसैन बनते हैं जिनके नाज रिसालत ने उठाए हों। पैगंबर इस्लाम क्यों इतना ज़्यादा मोहब्बत का, मेरे दीन का बचाने वाला। अज़ाने गिरामी ये सारी कुर्बानियाँ, इतना ज़्यादा अहतमाम, ये मखसूस है इमाम हुसैन से। उन्हें कहा गया सैयदुश्शहदा। अज़ाने गिरामी दुआएं तो सब मांगते हैं, लेकिन सजदे में सर पे तलवार हो और फिर भी इलाही बारगाह के अंदर कहें इलाही अभी दुखा बेबाबेक, परवरदिगारा तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए हैं, एक शिकवा जबान पे नहीं आया। मेरी दरख्वास्त है, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, मैं साहब से पहले ये 2 जुमले पढ़ना चाहता हूँ। आप देखते ना अगर कोई बीमार हो, कहते हैं भाई मौलाना नमाज का दिल नहीं करता, उठूँ कैसे, बीमार हूँ, बिस्तर पर हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में हम परेशान हो जाते हैं। और अगर किसी ने 72 लाशें उठाए हों और लाशें उठाने के बाद क्या कहें, रिदन बेकवाही व तस्लीम अमरे, परवरदिगारा मैं राजी हूँ, तूने जो इम्तिहान लिया, पता नहीं लोग हैं रावियतम मर्जिया, एक जबान पे शिकवा नहीं आया मौला हुसैन के, एक कंप्लेन नहीं आई, क्या कहा, रिदन बेकवाही व तस्लीम, परवरदिगारा तेरा बंदा तुझसे राजी है। कोई दुनिया में आदमी नहीं कहता इम्तिहान के बाद मेरा बच्चा मर गया, लोग कंप्लेन करते हैं, कहा परवरदिगारा मैंने अब्बास जैसे भाई को दे दिया, मैंने अली अकबर जैसा बेटा दे दिया, हबीब जैसे
پروردگارہ سب دے کے رضن بقضائہ و تسلیمن لعمرہ، میں راضی ہوں اور میں ابھی

कौन है? का अली अकबर की माँ है। इन्हें अली अकबर का बड़ा दर्द है, ये बहुत ज्यादा अपने बेटे को याद करती हैं। ये पढ़ो मसाहब, जानते क्या अल्फाज लिखे हैं? जनाबे लैला रोजे रसूल पे आके बैठ जाती और ऊंची आवाज से कहती, अली अकबर, माँ का जीना बड़ा मुश्किल है, बेटा मैं आपको भुला नहीं पाती। अजरकुमल्ला आज मैं कोशिश करूंगा, कंट्रोल करूं, पढ़ सकूं। जब शाम पहुंची ना बीबियां, मुझे जनाबे लैला के मसाइब पढ़ने आज, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। जब बीबियां हलब पहुंची, क्रिश्चियन इलाका है हलब, अभी भी वहां पे 30% क्रिश्चियन हैं। जैसे बीबियां पहुंची ना, तो नेजों पे सर थे शहदा के। एक बूढ़ी क्रिश्चियन खातून ने, ईसाई खातून ने देखा जनाबे अली अकबर के सर को। जब सर मुकद्दस को देखा तो देखती जा रही हैं, बूढ़ी खातून थी, देख रही हैं। जनाबे लैला ने आगे बढ़ के कहा, क्या बात है, सर को इतना क्यों देख रही हैं आप? उसने कहा, बीबी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी, इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो, मां ने इस बेटे का सर ना देखा हो। इतना खूबसूरत बेटा किसी मां का। तो जनाबे लैला ने रो के कहा, मां जिंदा है। अजरकुमल्ला भाई, आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। मेरे बरादर ने कहा था, भाई बीबियों के मसाइब पढ़िएगा इस अशरे में, सातवीं मजलिस है, अब सुनेंगे। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम वाहिद शहीद करबला हैं जिन्होंने चार हस्तियों से इजाजत मांगी है। पहले मौला हुसैन की बारगाह में आए, बाबा इजाजत है? मौला ने फरमाया, बेटा इजाजत है, लेकिन बेटा माँ से, फुप्पी से और भाई से पूछ लीजिएगा मेरी तरह। क्यों? जिहाद वाजिब है, इमाम अगर खड़े हैं ना लड़ने के लिए तो फिर सब पे जिहाद वाजिब है। मौला हुसैन खुद शहीद होने वाले थे, कहा अली अकबर मेरी इजाजत है। फिर जनाब अली अकबर कहाँ पे आए? मौला सज्जाद के खेमे में, जहाँ मौला सज्जाद एक चटाई पे लेटे थे। जनाब अली अकबर ने हाथ को चूमा, फिर पेशानी को चूमा। जब पेशानी को चूमा ना, तो आंसू बहने लगे। जब आंसू गिरे, मौला सज्जाद ने आंखें खोली, कहा अली अकबर मेरे भाई, ऐसे कौन से मसायब आ गए हैं कि आप इतना मुझे चूम रहे हैं? तो जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बकिया अबूना वहीदान गरीबान मज़लूमन अतशाना। ए भैया सज्जाद, हमारे बाबा बहुत मजलूम हैं, बहुत गरीब हैं, बिल्कुल तनहा रह गए हैं, बहुत प्यासे हैं, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। तो जनाबे सैयद सज्जाद ने फरमाया, अगर मुझे इजाज़त मिलती मैं भी कुर्बान हो जाता। जनाब अली अकबर ने फरमाया, नहीं, आप इमामत के वारिस हैं। आए फिर किसके पास? एक मरतबा जनाबे जैनब कुबरा के पास आए, कहा फूफी अम्मा इजाज़त है? कहा बेटा मेरी तो इजाज़त है, माँ से पूछ लीजिएगा। जनाबे लैला के पास आए, कहा अम्मा इजाज़त है? जनाबे लैला ने मना नहीं किया मना नहीं किया, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में कहा, अली अकबर मेरा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है, बेटा मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, बेटा मैं जी नहीं सकूंगी। तो जनाबे अली अकबर ने एक जुमला कहा, कहा कि अम्मा अब मैं आपसे इजाजत नहीं मांगूंगा, मैं नहीं कहूंगा मुझे इजाजत दे दें मरने की, शहादत की इजाजत दें, लेकिन अम्मा मैं एक सवाल करूं आपसे। हाँ बेटा क्या बात? का अम्मा अगर रोजे कयामत मेरी दादी फातिमतुज़्ज़हरा ने आपसे पूछा, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा बताइए आप मेरी दादी को क्या जवाब देंगी? जनाबे लैला ने रोक के कहा, अली अकबर आपने मुझे अच्छा सबक दिया है। अजरकुमल्ला भाई, मुझे जनाबे लैला के मसाइब को पढ़ना है, मैं जनाबे अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ूंगा। हमीद इब्न मुस्लिम या हुमैद इब्न मुस्लिम, अहले सुन्नत का रावी है, यजीद ने भेजा था इसको,
वो कहते हैं मैंने देखा एक जवान खेमे के अंदर गया, जब भी बाहर आना चाहता

का वास्ता हमारे जवानों की जवानियों को सलामत रख, परवरदिगारा वालिदैन की औलादों को सलामत रख, परवरदिगारा बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, परवरदिगारा जो हाथ बुलंद ने किसी को रद्द ना फरमा। मैं एक यहाँ पे जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मक्तलुल हुसैन में बड़े बड़े जैयद उलमा ने ये हाशिए पे जुमला लिखा है, जब जनाब सैयद शहदा देख रहे थे ना जनाब अकबर को लड़ता हुआ, तो आपने देखा कि एक बीबी के पाँव नज़र आ रहे हैं खैमे के दर पे, तो मौला ने फरमाया, लैला मैंने अपने नाना से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, लैला अली अकबर के लिए दुआ कीजिए। जानते जनाब लैला ने क्या दुआ की है, या रादा यूसुफ इला याकूब व इस्माईल इला हाजरा, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए इस्माईल को हाजरा से मिलाने वाले, एक मर्तबा अली अकबर को उसके बाबा से मिला दे। अब समझ में आया वापस क्यों आए थे, माँ की दुआ कबूल हुई। जब आए तो परवरदिगार तुझे वास्ता जनाब अली अकबर की अजमतों का, हमें मौला का जहूर देखना नसीब फरमा, हमें हमारे इमाम के आवानो अंसार में शुमार फरमा, परवरदिगार हमारी आकबत बखैर फरमा। मैं एक सवाल करूं आपसे, मैं देख रहा हूं अभी भी बहुत से लोग रो रहे हैं, मेरा एक सवाल है आपसे, आप सब ने मसायब सिर्फ सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। आप सोचें जनाब लैला का हाल, जिन्होंने जवान बेटे का सर नेजे पे देखा था, जनाब लैला जनाब जैनब मौला सज्जाद ये हस्तियां इन्होंने सब आंखों से देखा था। परवरदिगारा इन हस्तियों के मसायब का वास्ता हमारी आकबत बखैर फरमा, हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम बिहक्के मुहम्मदिन वालिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातमे हुसैन।

बैठूं नहीं बैठूं क्या करूं। कहने लगा इतनी देर में दरवाजा दोबारा लॉक हुआ, बस चली गई। तो अब वो मुझसे कहने लगा कि मौलिम मेरा क्या होगा, मैं तो करबला की बस में नहीं बैठ पाया। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें अल्लाह ने दिखा दिया है कि तुम काबिल हो बैठने के, अभी नहीं बैठ सकते, मेहनत करो तो बैठ जाओगे, हमें तो दिखाया भी नहीं है, तुमको तो दिखा दिया, इसका मतलब है तुम किसी काबिल हो। हम तो ज़िंदगी मगन ज़िंदगी गुजार रहे, हमें कहाँ दिखाया कि हम नहीं बैठ पा रहे, तो फिर तुम काबिल इंसान हो भाई। अभी हम सबको यकीन है हम बैठ जाएंगे, क्या पता, अभी हम सबको यकीन है हम इमाम का साथ दे देंगे। वाकई कितनी लाशें देखेंगे तो पीछे हट जाएंगे, मुझे वाकई समझ में नहीं आता। सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है, खुदा शाहिद है कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है। खुदा से कहें खुदा हमारे बस में नहीं, तू लुत्फ कर दे तो होगा, अपनी तैयारी पे भरोसा नहीं करें, ये हमारे बस में नहीं है। अगर हम अपनी तैयारियों पे भरोसा करेंगे ना, यकीनन गलत करेंगे, हम फेल हो जाएंगे, नाऊज़ बिल्लाह ताला। तैयारी भरपूर करें, जो कर सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए करें, लेकिन हमेशा खुदा से कहें खुदा मुझे पता है इससे नहीं होगा, तू लुत्फ करेगा तो होगा, तेरा एहसान शामिल हाल होगा तो होगा, वरना हम नहीं कर सकते, वाह खुदा नहीं कर सकते, कसम खाना मकरूह है। लेकिन मैं अपने हालत देख के कह रहा हूँ कि मसलन मेरे जैसा आदमी कहे कि मैं तैयारी कर ली है अब मैं कर लूँगा, नहीं नहीं वल्लाह नहीं हो सकता, हम लोगों का क्या भरोसा। आपने नहीं देखा कभी सुबह को आँख खुल जाती है, दिल चाह रहा होता है ये इबादत कर लें, फिर भी नफ्स कहता है 10 मिनट सो लो, होता है या नहीं होता है? मेरे जैसे के साथ होता है। अभी खुदा ना करे नाऊज़ बिल्लाह ताला उस दिन ऐसा ना हो जाए कि इमाम तशरीफ लाए और मेरा नफ्स कहे बस बस एक महीने बाद चला जाऊंगा, 15 दिन बाद बस ये निपटा लूं, बस फिर मैं जा रहा हूं। अभी तो होता है, इबादतों में होता है, सदके खैरात में होता है, सब में होता है। तो जिस दिन इमाम आएंगे उस दिन चांस है या नहीं है? है चांस। तो मैं अपने नफ्स के ऊपर कैसे भरोसा करूं? सिर्फ एक रास्ता है कि हम खुदा पे इंतज़ार करें, हम खुदा से कहें खुदा तैयारी तो हम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है काफ़ी नहीं है, थुलुत करे तो हो जाएगा। और सईदुल शुहदा के सदक़े में इंशाअल्लाह खुदा ने मुताल ये सआदत नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाजिल फरज। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि खुतबा नंबर 84 से आखिरी पैराग्राफ आपके लिए अर्ज़ किया था और चंद लाइनें रह गई थीं, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आप जाकर ख़ुद उसको पढ़ लीजिएगा चंद लाइनों को, क्योंकि अगर मैं तेज़ी से भी पढ़ूंगा तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अब मैं सोचता हूँ चंद लाइनें बहुत तेज़ी से मैं पढ़ दूँ, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 2-3 मिनट। कल यहाँ तक बात हुई थी बग़ैर किसी वक्त को गुजारे हुए, इमाम ने फरमाया कि थोड़ा सा रिया भी शिर्क है, हविस परस्तों की मुसाहिबत ईमान फरामोशी की मंजिल और शैतान की आमद का मकाम है, झूठ से बचो इसलिए कि वो ईमान से अलग चीज़ है, रास्त गुफ्तार निजात और बुजुर्गी की बुलंदियों पर है, दुरूगो झूठ बोलने वाला पस्ती और जिल्लत के किनारे पर है, बाहम हसद ना करो, हसद ईमान को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को, कीना और बोक्स ना रखो इसलिए कि नेकियों को छील डालता है, और समझ रखो कि आरजुएं अक्लों पर सहफ का और याद इलाही पर निस्यान का पर्दा डाल देती हैं। इस जुमले को नहीं छोड़ सकते जल्दी में, कभी होता है हम एक इबादत का इरादा करते हैं फिर भूल जाते हैं, होता है एक इबादत का इरादा करते हैं 5-6 दिन 10 दिन 1 महीना करते हैं बाद में ख़त्म। इमाम फरमा रहे हैं ये उस वक्त होता है जब तुमने किसी आरजू के पीछे गलत वक्त गुजार लिया। इमाम का जुमला गौर फरमाइएगा, कहा कि समझ लो कि आरजुएं अक्लों पर सहफ का, यानी अगर कोई आरजुओं के पीछे बहुत जाता है उसकी अक्ल सही कैलकुलेट नहीं कर पाती, गलत फैसले करने लगता है, बस आरजुओं की वजह से गलत फैसले करता है। आप कहेंगे बहुत